0: मैं हर चिलमन
1: चिलमन चिलमन
0: मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा।
2: ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से,
0: जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: जंगल है, आधी रात है।
1: इतना क्यों याद आ रही हो? What do you expect? ट्रेन से कूद कर लौटा हूं?

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली,
1: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: I don't know, you know.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर,
0: हाँ